सरकार दे देंगी, आयकर भी आवास रुपये साइन बन जाएंगे, अंत सब को आनंद अंत सभी का उनकी आप देंगी क्या दस कराए रे तुम रुपये हमारे आज चौथा में तो यार तुम ये साई का था ये सब वर जान लो साथ में रही जो साल से ना मन ऐसे ना ऐसे ना ऐसे करके जब चंदा लाई ये खड़क कभी जंबल ना उठ जाए जान है इसके क्यों सर आए मौन क्या हूँ मैं तो सुखा है लेकिन तू ना उठ जाऊँ